0: हम अकाशवरं तिमन रसकलांगे उड़ुतकाय बिमाय एदेमेदुगा वाहा तकेति हादुवाहुगे तेरेगा हेद्वीमे
1: आदि तिमन रसकलांगे वारुबली कमे लिबिवोडियन नुगन्नवे।

0: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam. Donta hal kinita?
0: Donta hal rangaru. Fatun ko bali ve ole kangeta.
1: Aa donta. Komme do ko salu bala. Beenu mahiteri ka for ko demu midani. Donta kambudu noe. Fatun ko ko ekanyu noane. Kokko ekanyu leti doctor dakkam ve stadivaneta. Ehme mekam ve sar me vara farwa teri kamai ki ebakora.
2: मुन्ना को बाकी है ना क्या देड़ा ही है
3: अल्हम्दुलिल्लाह मुन्ना आरांगल कालो में देड़ा ही है
2: अफनस देड़ा ही है मुन्ना मुन्ना कौन वड़ा में क्या दक काफ़ूंग अता
4: मुन्ना थी है बुरा को वैंडना हिंका में ने अफन थी कंको वालना
3: तिको तुम हाउ द है आरांगल लाए तिहं मुन्ना एक ही आह हाल बला फे मुन्ना सकां कंको देन्ना है दी मुन्ना वारा उपावे

0: हंगार
1: अंगार दो में दूर करी इकार गड़ फन रहे रिपीट इरे दिया गड़ तेरी हूँ आदि बुद्ध दो होकेरे में दमो पार गड़ तेरी हूँ
0: हंगार
2: हम एकानी दिवे ही राज्य क्या डूं
3: वगुता हालताय को लोभ इम्तिहान करेवे मिदुनिये का दरिफुर देखे इम्तिहाय लोभ वा बप्पे दुनिये आबाद कुरुं हुट्टाली ए दरिफुलगे दुनिये फुरिहम को दिनु मट्टका
4: रिपीट हमेरे दिहगट तिरी हूँ आदि हुकुर दुहगिरे मेंदम बार गट तिरी हूँ एंग आसतर स्टेक सालिस नुए किलो हर्ट्स मीडियम वेव आदि अट्ठी हनुए मिग हर्ट्स एफएम बैंड
5: दिवे राज से गेड़
6: हिमबिह जेहिफा वामी हकु केसा किं बिह अलमुं वैगे तेरे वायरस फेतुरे गेंदियुमुं हिमबिह फेतुरे बंदो तने गानम देगा डेरें हायर वंदें वैगे तेरे का वायरस होरे
7: वायरस के असर होरे तने का एलुम फो लोला नेफता आंगेगा एलुमुं हिमा भी फितुरे
8: बाया देखोला दिफा इबार निम्मी हुं आदि मीसल्स वैक्सीन के दे डोज फुरी हमको फार नुआ फरात का बाली जो हमुगे फुरसत बड़ो हिमा भी के आलामते फेनिजनमा लसनुकरवा सिही फरवा हो दवा

रोज खम गई अधि मरुफावा रश ए फिनुन तिमन रस कलांगे दिरुवी में खबल तकुन नुकुतुम विस्वनी एफ दईन्ने।

0: दुनिया के हतरु पितु
1: राचे के उतुरा देखुनु
0: खबरा मालूमात
1: हुट्टु मेन्नेति सव्वीस कडीरु
0: दिवहि राज्य के आडु
1: एंहा सतरस्ते का सालिस नुए किलोहर्ट्स मीडियम वेव अध्यनुए मेगाहर्ट्स एफएम बैंड

0: हंगार
1: अंगार दो मिंदर कोरी इकार गड़ फना रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूँ आदि बुद्ध दो होगेरे मिंदम बार गड़ तेरी हूँ
0: हंगार
2: हम एकनी दिवे राज्य चाडू
3: मुदर रिसे के अडू
4: ती मूसा गफानो मिस्रंग इंपुरी वड़ा गतो मूसा गफानो मिस्रंग इंपुरी
3: दारिवारुंगे सवाल तक आए को
5: फुरतमा एरी बोटका नें सोले हो एकले के फानो
3: इब्रतुम फुरिगें वा वाहक तक आए को दिवे राज्य गड़ुंगे निस्तेनी
6: फानोस कौम में हो कर दो है कि हावीर हाथरों के डिफाइनर है रिपीट कौम में आंगार दो है कि हावीर हाथरों के डिफाइनर है
3: इंहा सतरस्ते के 69 किलोहर्ट्ज मीडियम वेव आदि 89 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड दिवे ही राज्य के आड़ो
7: कौम में मीहा कीवेस ऐही तेरिकम बैनुम वाने मीहे हास्सको नुकुले दुन तेरिकम हुन्ना मीहुन्ना कुरिमतिवा गोंजे हुन तका एमी हुंगे हक्कु तका मुजुतमावगा ए फरायतावगे दावरा बेहे गोतुं आहरुमें कोम्मेहेंवे समाल कंदें जेहे
8: वाक एत्ता, मजमोन एत्ता, नोने ड्रामा एत्ता
9: अधिति ही कुरी रंगल कन्नू
10: नुकुले दन थरिकं हुन्ना फरायतका खासको दिवे ही राज्चे गड़ूंगे निस्तेनी
11: अतुगहिफा
12: ਮੇ ਆਦਿਤ ਦੁਹੇ ਕੇ ਮੰਦਰਫੋ ਦੇ ਚਾਇਰ
13: ਸਟੂਡੀਓ ਆਈ ਵਗੁਤੁ
10: ਇੰਹਾਸ ਹਦਰਸਤੇ ਕ 49 ਕਿਲੋਹਰਟਸ ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ ਆਦਿ 89 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਐਫਐਮ ਬੈਂਡ
13: ਹਮੇ ਕਨੀ ਦਿਵਹੀ ਰਾਜਗ
14: ਇਹ ਵੇ ਨੇ ਨਾਲਾ ਇਹ ਹੂੰ ਤਾਹਮ ਮਦੇ ਨੁਕਰਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੋ ਤਸਵਰ ਵਿਸ ਨੁਕਰੇਵੇ ਇਕਮ ਕੋ ekuluna elobi etasvata ei husasam mihi furi pandu mani
2: mihi tuge loi peti
15: komme budadu he gemenduri kuri egar gadi fanare repeat hama ere diha gadi tiri ho
16: enha satrste ke 49 kilohertz medium wave adi 89 megahertz fm band
2: divahi rajche ke adu
16: इंतजार करूंगा
2: मिहितुगे लोई पेती
6: दारिन के मैं अल्लो हवाल करवा फावा अमाना
17: दारिन के मैं बफेंगे लोलो के फिनिकं
6: ए दारिन ने हियो मकु दक्के दिन मकी मैं बफेंगे जिम्मा
17: ए हित्तकुके मामला मिली
9: बुरास्वति दोहगे मेंदुरु तेज जहायरु रिपीट हुकुर दोहगे रेगनु दिहे जहायरु आदि होनहिर दोहगे मेंदम एके जहायरु
12: हित्तकुके मामला मिली

0: قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون
1: लश्करें समाज उकुड़ा हथियार उकुड़ा दीदा पिसे गुड़ा दीदा
2: कौमी दीदे अंग इहतरा मदाक्रम को तुम हुड़िया बेफुड़ में स्कूल तदेव तदेव डायगत मत दरना I kindly ask everyone to please rise as we pay our respects to the national flag.

0: हंगार
1: अंगार दो मिंद्र कोरी इकार गड़ फन रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूँ आदि बुद्ध दो होकेरे मिंदमो पार गड़ तेरी हूँ
0: हंगार
2: हमें कनी दिवे ही राज्य क्या डूं

0: थुरास थुरास
1: थुरास ए तरीका अहर में बहा सगा फता आद का आदाय के तेरे का आद बावर घंटे तक हुरे अडवाहा लंबे नम ता
2: हाँ वारा पैनो
3: दिविराजे का ट्यून कोला अंगार दो के हावीर फाहिज जहर बुरासे दो के हावीर हाथरोगड़ फनेरा का आदि आदित दो के हावीर फाहिज जहर हमें कने दिविराजे के आड़ों

0: हंगार
1: अंगार दो मिंद्र कोरी एकार गड़ फणा रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूं आदि बुद्ध दो होगे रे मिंदम बार गड़ तेरी हूं
0: हंगार
2: हम एकनी दिवे राज्य के अड़ूं
3: मुदर रिसे के अड़ूं
4: मूसा गफानो मिस्रंग इंपुरी वड़ा गतो मूसा गफानो मिस्रंग इंपुरी वड़ा
3: दरिवरुंगे सवाल तक आए को
5: फुरतमा एरी बोटका नें ऐसोले हो एकले गफानो
3: इब्रतुम फुरिगेंवा वाह कतक आए को दिवेराज्य गड़ुंगे निस्तेनी
6: फानोस कौम में हो कुर्दो है कि हावीर हाथरु का डिफाइनर है रिपीट कौम में आंगार तो है कि हावीर हाथरु का डिफाइनर है
3: इंहा सतरस्ते का 6.5 किलोहर्ट्स मीडियम वेव आदि 8.5 मेगाहर्ट्स एफएम बैंड दिवे ही राज जे गेड़ो
7: गडिंग फतिहु हतरी जही मी दिवे ही राज जे गेड़ो